0: call Kuro 647-504-1557.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
3: JS Home Improved ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ $500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਲਿਫਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ $350 ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਗਰਾਜ ਡੋਰਸ $349.99 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ JS Home Improvement, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਨ ਬਿਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। 9057

क्या बात है, नहीं आए हाय वल्ले वल्ले यार, शाह गई प्रीथरपाल। प्रीथरपाल दी यार पहला काफी अच्छे अच्छे गाने, केड़ा सी एक केड़ा चले सी बीए फेल है एक, वो बड़ा चलिया सी एक प्रीथरपाल, उन्होंने कंगन गाना सीगा वो भी बड़ा चलिया सीगा। प्रीथरपाल दे होर केड़े केड़े गाने एक अद्धा लावांगे यार प्रीथरपाल दा। सो खैर प्रोग्राम है पंजाबी रहा, ते नंबर है अपना 905-673-3337, 905-673-3337 अपना नंबर है, 905-673-3337। सो गीत संगीत ऑलरेडी घंटा अपना लांघ गया, क्योंकि आपां अज डेस्टिनेशन की गल करनी है, क्योंकि हुण समर सीजन आ रहा। मैं हर साल यही इन एक दिन रखदा हुन्ना भी थोनू कुछ एक डेस्टिनेशंस दसीए ताकि तुसी अपनी समर इंजॉय कर सको। एक तो गल ये है साड़ी ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है वी लोकल इंटीरियर दे विच घूमन फिरन केड़ियां केड़ियां डेस्टिनेशंस ने। जे वो लिस्ट तुसी चाहुंदे हो मैं तुहानू भेज देना, सानू इंस्टाग्राम ते मैसेज कर दो ते फॉलो कर लो, लिख दो लिस्ट प्लीज या कुछ भी ते असी तुहानू लिस्ट अज भेज देंगे। उहदे ते 15-20 लोकेशंस ने, मिलदा 15-20 तो भी ज्यादा लोकेशंस ने, 1-2-3-4 घंटे की ड्राइव दे विच फिर तुसी समर च कित्थे घूमन फिरन जा सकदे हो। सो पेज है पंजाबी लहरा इंस्टाग्राम ते, उत्ते मैसेज कर दो लिस्ट भेज देंगे। PUNJABILHRAN पंजाबी लहरा इंस्टाग्राम PUNJABILHRAN। ते अज आपां एक होर नवीं लिस्ट बनाउने आ, हर साल ही असीं ये करदे हुंने आ, मैं इहदा नाम लिख रहा डेस्टिनेशंस इन अंटेरियो 2026। ते तुसीं कम करो हुण स्टूडियो च फोन करो ते तुसीं दसणा वी कित्थे कित्थे घूमण फिरन जा सकदे हो अपने विद इन की कहिंदे हुंदे आ कि घंटे दो घंटे की ड्राइव। कोई बाली महंगी जगह ना होवे देखण नूं, कोई माउंटेन्स, कोई लेक, कोई अपना बीच है, कोई हाइकिंग ट्रेल्स ने। हुणे बाई जी दस के हटिया की इहने नां लिया सी, बैंकक्रॉफ्ट क्या सीगा वी नवी, उत्थे पहाड़ी पहाड़ है, उत्थे बहुत सारे वाटरफॉल भी ने, आइलैंड टाइप एरिया, नेचर बहुत वधिया। बैंकक्रॉफ्ट वैसे पैंदा कित्थे कि इत्थों जे आपां, ना बैड यार, दो तकरीबन 2.5 घंटे, दैट्स इट। भले बैंकक्रॉफ्ट मैं भी नहीं कदे गया, जम्मे पड़े इत्थे आ ते कदे टाउन ही नहीं देखिया। सो इदां दे ना बड़े टाउन बड़े एरियाज ने जिहड़े आपां कदे देखे नहीं, मैं हुणे बैंकक्रॉफ्ट नूं देख रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। सो स्टूडियो दा फोन नंबर है 905-673-3337, 905-673-3337। थोड़ियां कुछ कॉल्स लै लैंदे हां ते देखदे हां कि नेड़े तेड़े तुसीं किहड़ी किहड़ी डेस्टिनेशंस दसदे हो। 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337 नंबर है अपना, 905-673-3337, 905-673-3337 ते कॉल थोड़ी आ सकती है। याद रखो नाल दी नाल एरन मिल्स एक्यूरा नूं एक्यूरा दी गड्डी लैनी है, एक्यूरा दा एसयूवी लेना। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भल्ला ते करण शर्मा दोनों साडे वीर मैनेजर्स ने, इन्नी कमाल दी एक डीलरशिप दे। एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800, 905-828-5800 दे उत्ते तुसीं कॉल करो एरन मिल्स एक्यूरा। उसदे नाल नाल एक तुसीं याद रखो जरूर HK मूवर्स नूं, नंबर वन मूविंग कंपनी अपने शहर दी, HK मूवर्स 416-524-6704। नवां घर लिया मुबारक, हुण मूविंग कंपनी दी भाल च

0: sun, jump our sun, to our sun, happy sun, not it, horsey be sun, bole, sonny hall, sassier car.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

खूबसूरत मकान, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मकान सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हो। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरपो निर्वैर रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे तो हमेशा ही तरह। अज के शुद्ध में तुम सामने शामिल होंगे, जिते चलेंगा चलूंगी नाल, तेरे टिकटा दो ले ली। स्टूडियोज नंबर 905-673-3337 905-673-3337 ते तुसी साढ़े नाल गलबात कर सकते हो। एक बार फिर नवीं गलबात, नवी चाहत देना नवे दिन में जिते शुरुआत कर चुके हो, तो ग्रे स्काइज प्लस मिक्स सन एंड क्लाउड के नाल बारिश ते हल्की धुप, ड्रिजल बूंदाबांदी कितें होगी, हैवी रेन के नाल अज के दिन प्लस डबल डिजिट दे विच तुसी इंजॉय कर जा रहे हो। रिवाज हर सवेर तुहानू अपडेट करता करंट जो मार्केट मुद्दे ते सारी गल्लां बातें दे नाल कुछ खबरां जिन्हां तुहानू तक लैके आउंदे ने नज़ारा नज़ारा जिथे तुसी अपने इवेंट्स विआह शादियां ते जिथे तुसी अपने दोस्तों के नाल पार्टीज़ वगैरह बुक कर रहे हो, उत्थे फाइन डाइनिंग लग्जरी जिहड़ा हैगा नज़ारा नूं जिसनूं असी प्रमोट कर रहे हैं, तुसी 905-451-2600 या www.nazara-resto जो लॉन्च नूं तुसी इंडियन रेस्टो लॉन्च नज़ारा गूगल ते जाके तुसी पिक्चर्स ते व्यूज़ देख सकते हो और तुसी कह सकते हो कि वाह क्या बात है। 905-451-2600 इसी तरह शो का हिस्सा तुहाडे तक मनिंदर सिंह पड्डा लैके आउंदे ने। मनिंदर सिंह पड्डा जो कि लाइसेंसड पैरालीगल ने, दो चीज़ां स्पैशलाइज करते हैं, ट्रैफिक टिकट अगर मिल जाए, डकफूड साहब की मेहरबानी है कि ट्रैफिक टिकट मिल के अगर इंश्योरेंस नूं पता लग गया, हजे तो उन्होंने ये भी तुसी बेकसूर हो, कुछ नहीं किया, कदे कोई एक्सीडेंट नहीं किया, कोई क्लेम नहीं ली, फिर भी सत्यानाश मारा लोगों का, पर जे उन्होंने पता लग गया ना कि भी थोड़ा टिकट मिली है, यू आर डन, तुसी जे प्रोविंस चेंज कर लो या फिर गड्डी की फीस एक भत्ता पे करना शुरू कर दो, इंश्योरेंस नहीं पे करोगे। सो तुसी अपनी ट्रैफिक टिकट नूं फाइट कर सकते हो, पॉइंट्स बचा सकते हो, रैकेट नूं बचा सकते हो। 647-864-0797-647-864-0797 या थोड़े किराएदार बढ़ गया है, डकफोर्ट साहब की मेहरबानी है, नौ नौ महीने लोगों के घर चों नहीं निकलते, प्रॉपर्टियां तोड़ के भन के कूड़ा रख के अंदर पूरी तरह नाल जो बंदा लैंडलॉर्ड आ उस दे उत्ते टॉर्चर करके, तो पुलिस स्टेशन पुलिस कहती है लैंडलॉर्ड टैनेंट बोर्ड चल दो, टैनेंट बोर्ड वाले इन्हों पुछ रहे थोड़ा कुछ होर तो नहीं चाहिए, कोई एप्लीकेशन थोड़ी तो नहीं रहेगी, कितने थोड़े नाल धक्का ना हो जाए, तुम पता नौ महीने तो किराए दे रहे हो, सानू सुनया नहीं, तो ये जो स्पैशल अपॉइंटमेंट के उत्ते सो कॉल्ड ट्रिब्यूनल के बंदे बिठाए हुए हैं जिन्होंने जज कह दें, आप इस समय डग फूड के हालात ये ने, हर रोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से डग फूड का इस्तीफा मंगया जा रहा है कि एक साल पहला इलैक्शन प्लैन ना कराए गए ता जो इलैक्शन हारन तो बच जाने, तो एक जबरदस्त तरीके सरकार जी लोगों से लियाई गई है अज।

0: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशना ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाले सब्जी ते दूध क्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड, 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नू कॉन्टैक्ट करो। थोड़े कोल AZ लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कॉन्टैक्ट लई नंबर है 647-292-5557-5557।
7: असी कर दे हा फिकर, तुसी रहो बेफिकर, तुसी जियो बेफिकर।
8: की गल भाई जी, एने बेफिकर ता तुसी मेनू कदे नजर नहीं आए, राज की है? बेफिकर होण दा ए राज मेनू दिता है जसविंदर कौर तग्गर दी इंश्योरेंस पॉलिसीज ने। साडी लाइफ इंश्योरेंस ट्रक ड्राइवर्स लई डिसेबिलिटी ते क्रिटिकल इलनेस दे चंगे प्लान्स, साडे पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस ते बच्चा लई RESP। तुसी भी रहो बेफिकर ते कॉल करो जसविंदर कौर तग्गर नू 647-765-2340-647-765-2340।
9: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

Brampton या फिर तीजे लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900 आप पंजाब

0: ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਚੁਆਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ, ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੇਵ ਟੂਡੇ, ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੋਰ ਫੋਨਸ, ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ, ਮੋਰ ਚੋਇਸ।
2: A1 cakes and pastries 1997 to thodi seva karda aa reha hai. Cakes, pastries, mithaiyan, samosas te party decoration bhi le sakde ho. Nakal karke cakes ate pastries bechan walyan to bacho te Jaspal Nagra nu phone karo.
3: A to Z kitchen cabinet, bhai wah, kya kitchen cabinet taiyar karde han. Lucky bhaji diyan baniyan kitchen cabinet dekh ke guanti vi bohane naal tuhade ghare aunde han. Sheeshe naal bhariyan kitchen cabinet waste, designer kitchen cabinet waste, A to Z kitchen cabinet, 416-720-7073, 905-720-7073 de call kar sakde ho.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
4: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
6: मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा।
7: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
8: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट इन पूजा हट पर, और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फैदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
9: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
10: डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवान वास्ते शराब, अफीम, पोस्त, डोडियां दे नशियां तो दूर कर देंदे हैं डॉक्टर कुमार। लेडीज दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार। बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे हैं भाई डॉक्टर कुमार। हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे हैं डॉक्टर कुमार। हर तरह दे इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार, 416-425-0138, ग्रेटर पंजाब प्लाजा, माल्टन गुरु घर दे कोल ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ, 416-425-0138 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
11: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

0: एयर क्वालिटी इंडेक्स हैगा जी 2। सो ए सी जिहड़ी जी वैदर रिपोर्ट ते सुखी जी
1: जी लो फिर गीत संगीत नाल करदे आं जी सिलसिला शुरू। ते काफी एक पुराना गीत महेंद्र कपूर होरां दी आवाज दे विच आ जे इस फिल्म दा नाम कोई दसेगा।
0: अच्छा जी
1: लो जी एक हो आपां इस फिल्म दा तुसी नाम दसना ते इस फिल्म दे विच केड़े हीरो सी ओदा नाम दसना ते फिर तुहानूं कुछ ना कुछ अज लंच स्पैशल किते ना किते आपां जरूर देवांगे। नंबर है 9057990999 ते कर रहे हैं इंतजार तुहाडियां कॉलां दा।

0: जी दोस्तों एक बार फिर स्वागत है बतनों दूर दे विच और देखते हैं जी पहली कॉल साड़ी हैलो शेलो कर दे जी फ्राइडे का दिन है जी आयो जी सत श्रीकाल की हाल चाल ने गूगल तो मिनटा च लभ पैंदा हिसाब किताब पर फिर भी गलत
1: पुराने
0: मूवी भी पुरानी सी जी थैंक यू सर थैंक यू और नहीं जी थोड़ा जा गलत इन्हां दा जवाब हो गया 9057990999 ते कॉल कर सकते हो दस दिए कि अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है वह तुहाडे तक असी नोवल फ्रेश फूड दे सहयोग दे नाल पेश कर रहे हैगे दोनों लोकेशनां दे उत्ते बड़ी वड्डी सेल चल रही है कैनेडा डे की खुशी दे विच घर च बरतन वाला हर तरह का ग्रोसरी का समान तुहानूं बड़ा सस्ता मिल रहा नोवल फ्रैश फूड तो एक लोकेशन है ब्रम्पटन दे विच हाईवे 10 ते बबेड ते दूजी है सैंडलवुड ते एयरपोर्ट दे कॉर्नर ते तीसरी लोकेशन कैनेडी रोड दे उत्ते तैयारियां चल रही जी ते बहुत जल्दी अनाउंस असीं करांगे नाल दी नाल अज दा प्रोग्राम ढिल्लों वीडियो दे सहयोग नाल भी पेश कर रहे हैगे आ आईपी टीवी लैणा चाहुंदे हो आईपी बॉक्स लैणा चाहुंदे हो जां फिर तुसीं ऐप डाउनलोड करना चाहुंदे हो जो कि बहुत वड्डा सॉकर दा फुटबॉल दा कप हो रहा उहनूं घर बैठे बिठाए देखना चाहुंदे हो।

0: कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही क्या सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही भेज दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करदे आ। सस्ते दा दावा तां नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
4: चलो AM 530।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
9: ਅਮਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਿਊ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਟਾਇਰ ਪਵਾਓ, ਰਸਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਬ੍ਰੇਕ ਜੋਬ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਈਵੇ 50 ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨੰਬਰ 91 ਹੇਲੀ ਰੋਡ, ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 905-8675-7596। A&J ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ। ਦੋਸਤ

है 416-891-1722, 416-891-1722, पील एक्सकवेशन सर्विस वाले का नंबर है। छोटी जी म्यूजिकल ब्रेक लैके जल्द वापस आवेंगे तो फिर चलेंगे लाइव ऑलोकेशन प्रोग्राम के वल। नैक्सट फरमाइशी गाना अमर सिंह चमकीला ते अमरजोत जी दी आवाज़ दे विच इंजॉय करो। सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।